जे दूसर होए कबीर कर्म करीम का ओ करै जाने सोए। इस गल विच कोई शक नहीं कि परमात्मा सब तो पवित्र हस्ती है। मैं इस गल विच तां शक करां जे उस वर्गा कोई होर भी होवे तां। हे कबीर, ओ मनुख ही ये गल समझ सकता है जिसनूं वाहिगुरु समझण योग कर देवे। ये बख्शिश उस परमात्मा दे अपने हथ विच है। इसलिए बंदे खोज दिल हर रोज़, ना फिर परेशानी माहे।

जिंदगी का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये कह

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज़ ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी ये कहेगा तू गाना, हंसते गाते दिन बिताना। एक दिन

जिस दिन चुप तू हो जाएगा, इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी

गिंद अपनी मैं दिती है गवा, एक बारी मिले सजना। महला ते माड़िया सब नू विसार के, सब नू विसार के सब कुछ वन।

कली बैठी हम मैं लेके आसार एक बारी मिले सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिले सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिल सजना काल दा निशाना मेरे सिरे उत्ते वजना सिरे उत्ते वजना कड़े है जड़ा उन्हें एक दिन पजना एक दिन पजना एक बार

उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं। लिखे हैं मन ने पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल चल।

ने बड़े यत्न से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने ये हरियाली भरी वादी ये फूलों से लदी।

रे उसदा ना उस तो कोई परदा। ओथे अमला दे होने ने नबेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी। किसे रोंदे नू हसाया ए ते दस खां, किसे भुखे नू रजाया ए ते दस खां, राजो रोड़े नू हटाया ए ते दस खां, कदे जख्मी किसे दा फट नहीं सीता। एवें फेरी तस्वीर।

अद्धी रात तक करना आंदा, अद्धी रात तक करना आंदा, सप्पा दियां सिरियां नप के सौंदा, अद्धी रात तक करना आंदा, सप्पा दियां सिरियां नप के सौंदा। अज हंजू केर रोवे, अज हंजू केर रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, किंज पैने फिर किते भंगड़े, किंज पैने फिर किते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ, मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तो लियाना पैना, इनकलाब दा पुत्रो लियाना पैना। सच कहंदे ने सियाने जट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने जे जट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे। कुछ तू भी सोच विचार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकलां नू हथ मार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकलां नू हथ मार ला रूबी, तेरे केड़ा छत तो आने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने, अणख आबरू खोण नी देनी, अणख आबरू खोण नी देनी, तरत मोहताज किसे

0: ही चल पता चल जाएगा कि ये कितना को होना चाहिए।
1: जी जी
0: ठीक है
1: बिल्कुल।
0: दूसरा है जिदे विच असीं इहनूं कहिंदे आ अथोरिटेटिव स्टाइल। ये पहले जिदी मैं गल कीती अथोरिटेरियन है
1: जी।
0: सेकंड है अथोरिटेटिव जिहड़ा काफी हद तक बैलेंस्ड पेरेंटिंग है
1: जी जी जी।
0: जिस दे विच असीं बच्चियां नाल गलबात करदे हां, असीं उहनां दी गल सुणदे हां, असीं अपना अपने डिस्कशन करते हैं, असीं अपनी गल उन्हां दे सामने रखते हैं, असीं पॉजिटिव नैगेटिव दे बारे गल करते हैं, कदे बच्चे तो असीं कन्विंस हो जाते हैं, कदे बच्चा साडे
1: तो हो जाता है जी जी जी।
0: और इन्हूं मेरी नज़र विच पॉजिटिव पेरेंटिंग है
1: जी जी। टू वे कम्युनिकेशन
0: है, बच्चे नूं कदे भी ए नहीं लगदा कि मेरे तो सुनदे ही नहीं।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना
1: जी।
0: कई बार ऐसा भी होंदा है कि तुसी अपनी ही गल मनवा लैंदे हो पर बच्चे नूं एहसास नहीं होंदा कि मेरे नाल जबरदस्ती हुई है।
1: बिल्कुल ठीक है।
0: तुहाडा कन्विंस करन दा तरीका इस तरह दा होंदा है
1: जी जी जी,
0: दैट इज अथॉरिटेटिव। ठीक है
1: जी जी।
0: एक है थर्ड जिसके बारे में गल करना चाहनी है, वो है परमिसिव पेरेंटिंग।
1: परमिसिव
0: दे विच है कि तुसी छूट देती है बच्चे नूं,
1: खुला ही छोड़ देता है कि जो मर्जी करे।
0: तुसी उस तो अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत घटा ली है
1: जी,
0: कोई फर्क नहीं पैंदा तू जो मर्जी कर
1: जी जी जी।
0: ठीक है, हर एक चीज ओनू तुसी मुहैया करांदे हो, ओदियां डिमांड्स जिहड़ियां है तुसी ये नहीं देखदे कि वो जेन्युइन है या नहीं, वो पूरियां करना तुहानू लगदा जरूरी है और तुसी वो बोलदा और पूरियां कर दे। इस तरह की पेरेंटिंग दे विच चाइल्ड स्पॉयल हुंदा है जो आम तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं समझाई जाती कि चीजा किस तरह आंदी है, किस कितनी डिमांड होनी चाहिए है।
1: जो उन्हें मुंह कढ़िया हां
0: उन्हें ये नहीं लगता कि जरूरत के हिसाब नाल चीज होंदी है, उन्हें लगता जो दिल करे वो होंदी है
1: जी जी जी जी बिल्कुल।
0: वो इस तरह सीखता है। इस तरह के बच्चे फिर अगे जाके कम्युलेटिव बनते हैं, चीजा कठिया कर लेनिया चाहे लोड़ हो चाहे ना,
1: बस उन्होंने जमा करी जाना है सब कुछ।
0: ठीक है
1: बिल्कुल।
0: फिर है अनइनवॉल्वड पेरेंटिंग। अनइनवॉल्वड जिथे पेरेंट्स इनवॉल्वड ही नहीं है,
1: कुछ भी नहीं कर रहे हो, ते उन्होंने
0: फिजिकल प्रेजेंस नहीं है
1: जी,
0: जरूरतें सारियां पूरियां हो रही हैं बच्चे दी
1: जी जी जी बिल्कुल, पर वो उते है नहीं,
0: उते नहीं है ना, वो टाइम दे रहे हैं, जे वो हैगे भी है तो वो कुछ होर कर रहे हैं
1: जी जी,
0: बच्चे लई नहीं है
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो अपनियां कुछ एक्टिविटीज़ दे विच इन्ने बिजी है या उन्हां नूं ये लगदा ही नहीं कि ये जरूरी है, उन्हां नूं लगदा है जरूरतां पूरियां करनियां ही पेरेंटिंग है
1: जी जी।
0: और वो सारियां जरूरतां पूरियां कर रहे हैं और बच्चे नूं भी एक टाइम तो बाद ये लगन लग जांदा है कि मां-बाप जिहड़े आ वो जरूरतां पूरियां करन दा सोर्स है,
1: उन्हां दा होर कोई रोल नहीं,
0: वो जुड़ाव नहीं आंदा, एक कनेक्ट जिहनूं असीं कहिंदे आ भावनात्मक जुड़ाव
1: नहीं
0: बनदा।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: उन्हां लई इन्हां चीजां दी इंपोर्टेंस नहीं हुंदी कि इकट्ठे बह के डिनर करना, बच्चे दी गल सुनना, अज स्कूल च की होया, उहदा होमवर्क देखना, इस चीज दी कोई इंपोर्टेंस नहीं। इह है तो बेसिकली ये चार स्टाइल है
1: जी जी जी।
0: और मेनू लगदा हैगा कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है जिहदे विच टू वे डिस्कशन है,
1: दोनों दी गल हो रही है।
0: हां जी
1: दोनों तेरा
0: उस दे हां जी उथे कनेक्ट जुड़दा है, बच्चे जुड़दे है
1: जी जी,
0: वो वड्डे होके भी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करदे है
1: जी जी,
0: बजाय के बाहर कोई लभन दे कि जिहदे नाल मैं दिल दी गल करा, पेरेंट्स उन्हां दे दोस्त बन जांदे आ टाइम नाल
1: जी जी।
0: मेरा पर्सनल व्यू है कि ये ज्यादा अच्छा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि डायलॉग तो होना चाहिए है दोवां दे विच, जे यही विच माइनस हो गया ते वो गैप बढ़ता जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: ते जिहड़ी वैसे सब तो ज्यादा केड़ी पॉपुलर है, आम जिहड़ी जनता जिहड़ी है वह इनवॉल्व हुंदी है जिहदे विच, सब तो जिहड़ी पॉपुलर
0: आम लोग करदे है
1: जी जी जी।
0: जो मेरा एक्सपीरियंस है साडी जनरेशन दे जो ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ
1: ਜੀ ਜੀ,
0: ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਚੋਂ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਡੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬੀਡੀਅੰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
1: ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਚ,
0: ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
0: ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ,
1: ਕੋਈ ਦਰ ਪੀੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
0: ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
1: ਜੀ ਜੀ।
0: ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ
1: ਜੀ ਜੀ,
0: ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ
1: ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
0: ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ
1: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ

एहसास करो ओ मेरी माँ है कम्बदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चम्बदी, एहसास